0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची इट्स हॉट।

0: ये एक काफी डिस्गस्टिंग मिथ है दैट बिटवीन मैन एंड वुमेन द वन पर्सन जिसे इंटीमेसी फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा पसंद है दैट जेंडर इज ऑलवेज गाइज दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू. समटाइम्स एक रिलेशनशिप में अ वुमन कैन हैव हायर डिजायर्स मोर ऑफ अ लिबिडो दैन द मैन. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है एंड यू डोंट नो हु टू टॉक टू अबाउट दिस व्हाई डोंट यू हिट मी अप. मैं हूं आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है RochieI. फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. एंड फॉर मोमेंट मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेब.
1: हेलो रोशी,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ मैं तो ठीक, मतलब ठीक नहीं, बस कुछ ऐसे चल रहा है.
0: क्या हो गया बेबी?
1: तो मैं थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ. तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा ना एक सर के ऊपर दिल आ गया. वो बहुत ही क्यूट से थे. तो तब तो सर कुछ ऐसे मतलब फ्लर्ट बैक किए नहीं कुछ. तो ठीक है ठीक है, ऐसे चलते चलते अभी मैं कुछ दिनों पहले रिलेशनशिप में आ गई. अभी कुछ 7 or 8 days हुआ है मेरा. तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रही, मतलब चल तो बहुत अच्छा ही रहा है रिलेशनशिप. पर अभी मुझे लग रहा है मेरा बॉयफ्रेंड ना मतलब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है. वो होता ना वैसे, कोई स्पार्क नहीं मिल रहा मुझे उससे.
0: और आपके रिलेशनशिप को 7 दिन हो गए. ओके ठीक है.
1: इसके अंदर मेरे जो सर थे फर्स्ट ईयर में वो अभी आ गए हैं और आके क्लच बैग भी करना शुरू कर दिया. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. मतलब
0: आई मीन ऑनेस्टली इफ आई वर इन योर प्लेस तो मैं एक चीज करती, सबसे पहले तो इस बॉयफ्रेंड को लाइक आजाद कर देती बिकॉज ही इज नॉट क्लियरली वर्किंग फॉर यू. आप उसे बस सिंपली बोल दो कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू एंड दैट उसकी कोई गलती नहीं है. आपने जैसे मुझे बोला है ना कि 100 में से 200% वो ट्राई कर रहा है, आप उसे यही बोलो कि 100 में से 200% तू ट्राई कर रहा है. बट आई फील वेरी गिल्टी क्योंकि आई डोंट फील द सेम वे दैट यू फील. तो आई डोंट थिंक इट्स ऑनेस्ट टू कैरी ऑन दिस रिलेशनशिप. ये क्योंकि छोटा सा रिलेशनशिप है ना, 7 दिन का, इसमें ये लेवल ऑफ ऑनेस्टी चलेगी विदाउट हिम गेटिंग टेरिबली हार्ट ब्रोकन. ठीक है.
1: हाँ,
0: तो इसको तो आजाद कर दो. ये जो सर का मामला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपके सर शादीशुदा है?
1: नहीं नहीं नहीं.
0: ओके एंड लाइक डज ही हैव अ गर्लफ्रेंड और इज ही सिंगल और व्हाट?
1: नहीं वैसे तो नहीं लगता, मतलब गर्लफ्रेंड है अगर तो कोई ऐसे फ्लर्ट तो नहीं करेगा
0: ऐसा. यू विल बी वेरी सरप्राइज कि लोगों की शादियां होती हैं फिर भी वो फ्लर्ट करते हैं, फिर भी गर्लफ्रेंड. आई टेल यू कि ये आप एक्सप्लोर तो कर सकते हो. ठीक है. और इसका एक्सप्लोरेशन में आपको मजे भी बहुत आएंगे बिकॉज यू आर क्रशिंग ऑन दिस गाय. बट दी ओनली थिंग टू रिमेम्बर इज कि बहुत कठिन है डगर पनगट की क्योंकि वो आपके सर रह चुके हैं तो ऑब्वियसली एज में डिफरेंस होगा. वी डोंट नो इफ ही इज मैरिड और डेटिंग. आई मीन यू आर सेइंग ही इज नॉट मैरिड बट वी डोंट नो अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं. और जब रिलेशनशिप में एज डिफरेंस होता है तो एज डिफरेंस के साथ अपने अलग प्रॉब्लम्स आते हैं. बट अगर वो सिंगल है और आप भी सिंगल हो तो इसको एक्सप्लोर करने में मेरे हिसाब से तो कोई खराबी नहीं है. बट उसके लिए आपको सिंगल होना पड़ेगा पहले. बिकॉज इफ यू आर लाइक चैटिंग विद दिस सर और साइड में आपका बॉयफ्रेंड मर रहा है कोने में, उसे चीटिंग कहते हैं. यू डोंट वांट टू चीट समवन, राइट? सो
1: हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं उसको चीट कर रही हूँ
0: टेक्निकली. हाँ तो आप इसे ठीक क्यों नहीं करते हो? पहले उस बॉयफ्रेंड को बोलो कि इट वॉज वेरी नाइस चिलिंग विद यू, एक हफ्ता बहुत अच्छा था, मैं कभी नहीं भूलूंगी बट अब हमसे ना हो पाई. ओके बाय बाय. उसके बाद सर को बोलना हेलो सर, हाउ आर यू, दरवाजे खुले हैं, आई एम सिंगल. इट्स काइंड ऑफ दैट सिंपल.
1: थैंक यू,
0: यू आर मोस्ट वेलकम. कीप मी अपडेटेड ऑन योर सर वाली स्टोरी. ओके, टेल मी हाउ इट गोज.
1: ओके ओके ओके,
0: ऑल द बेस्ट टू यू स्वीट हार्ट. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू.
1: थैंक यू,
0: टेक केयर स्वीट.
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय.
0: अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, डजंट क्वाइट सीम लाइक अ प्रॉब्लम, शी सीम टू नो व्हाट शी वाज डूइंग एंड व्हाट शी वांटेड, बट इन एनी केस आपको ब्रोशी की जरूरत है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई प्रॉमिस टू बी देयर फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochieI. सो फाइंड मी ऑन इंस्टा, फाइंड मी ऑन फेसबुक, वो व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

ये जो दुनिया में लव बाइट वाली सिचुएशन है ना, ये काफी chaotic है. इफ समवन गिव्स यू अ लव बाइट ऑन योर नेक, तब भी आपके मम्मी पापा को पता है कि आप कहाँ से होकर आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो. लेकिन इमेजिन करो कि यही लव बाइट आपके अपर लिप पर हो. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू योर पेरेंट्स? सो मेरी बेस्टी की मॉम केम टू विजिट हर अभी रिसेंटली फ्रॉम हर होम टाउन, और बेस्टी ऐसे नीचे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में मेकआउट कर रही है. ऊपर आती है, शी हैज लाइक चेक्ड हर नेक एंड एवरीथिंग, नेक पर कुछ निशान नहीं है, तो चिल कर रही है. सडनली उसकी मॉम उसे देखे गई थी, बेटे तेरे अपर लिप पर क्या हुआ, ये ऐसे पर्पल पर्पल निशान क्या हो रहा है? एंड मम्मी ऐसे ना उसे बहुत घूर के देख रही है, एंड शी रियलाइजेस की ओ माई गॉड, आई एक्चुअली हैव अ हिकी ऑन माई अपर लिप. बट उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड सोचो, शी टर्न अराउंड लुक्ड एट हर मॉम एंड सेड, मम्मा मैं ना अभी दरवाजा खोल रही थी गाड़ी का और दरवाजा सीधा मेरे मुंह पे लगा, पता है इतनी जोर से, आई डिडंट रियलाइज इस पे निशान पड़ गया है. और आंटी ने ये बात मान भी ली. अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी बेस्टी की तरह आप कभी पकड़े गए हो विद लाइक अ लव बाइट और एनी सच थिंग, और आपने किस तरह का झूठ बोला टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट? टू टेल मी द आंसर टू ऑल ऑफ दैट एंड अबव, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: यार ब्रेकफास्ट खा लिया?
1: अच्छा लंच खा लिया?
0: अच्छा सुन, डिनर खा लिया? ये ना मेरे बारे में एक बहुत गंदी आदत है, मैं अपने सारे रिलेशनशिप्स में बिल्कुल ही लाइक मम्मी रूप धारण कर लेती हूँ, एंड आई गेट सो कंसर्न अबाउट माई बाबू शोना कोट एंड कोट ईटिंग और नॉट ईटिंग, बट आई रियलाइज दिस इन द लॉन्ग रन यार, कि बंदों को नहीं अच्छा लगता है जब बंदियाँ उनके पीछे पड़ी रहती है ना कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया। अरे यार इतने साल तुम्हें डेट करने से पहले भी तो बंदा खाना खा रहा था, जी रहा था, मरा नहीं तभी तो तुम्हें डेट कर रहा है। आई थिंक वुमेन लाइक मी, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी एक बैक स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना हमें पता नहीं चलता कब हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मम्मी या पापा का रोल अडॉप्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप में, वहाँ से ऑनेस्टली रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ डाउनहिल जाता है। आस्क मी, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई माई रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट इज बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही यू नो रिस्पॉन्सिबल और केयर टेकिंग पार्टनर बन गई थी रिलेशनशिप में, हमने बस मज़े करने बंद कर दिए थे। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप मज़े कम और मम्मी या डैडी रोल ज़्यादा निभा रहे हो ना, हैव अ गुड लुक एट योर रिलेशनशिप एक बार, एंड अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, मैं हूँ ना आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड आई प्रॉमिस वी विल गेट टॉकिंग, एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम,
0: नंबर 20।

A banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. और number 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19। नंबर 19।

0: Big Girls Club. If you want to play, fall in line, little boy, because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby, because you're gonna die.
1: Have you noticed, जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 10

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, एंड अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. And main har jagah aisa bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 6.

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स। जब गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 3
3: या

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे। देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर। एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस। लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है। धूम जैसे फिल्म कहा थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था। पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी। फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2। एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी। यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई। और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है। रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए। सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल नंबर 1। दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर 1।

0: एक और हफ्ता और गैरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on Gana number 10. At RJ Kanega on Instagram par koi gana share karna, koi baatein batani ho, bindas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanega. Enjoy. Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं। कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वांट यू टू थिंक समथिंग। सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेज हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड टू हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए, आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना।

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल, @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 9।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: कैश किंग की आवाज में। गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील है कि कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मैनी कॉन्वर्जेशन विद बोथ ऑफ देम, एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं, एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। सो येस, दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indie Top 10 की तरफ से super mad respect to you guys. अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है बेवजह, Khosla Raghu की नई album का पहला गाना। It's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: हजार रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे कारिगर इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार, हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

म्यूजिक के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं, जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था। पर जितने लोगों से बात करो, उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं। और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। That's just the magic that this man has. आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है। आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोज रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है। इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। कि जब सारा जग सोता है, ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लगी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वॉज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे एट RJ कनेगा पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनेगा. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी, हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी का साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7। एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

Mirchi, it's hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू एमर्जी मॉर्निंग्स. और अगर अभी फिलहाल तुम ब्लैंकेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट में फंस गए हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन. सो वेदर यू ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स, ग्रैबिंग योर कॉफी, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अभी भी पिजामाज में घूम रहे हो, आई हैव गॉट यू. अगले कुछ घंटों में हम मिलकर करने वाले हैं ढेर सारी बॉलीवुड की गपशप, ढेर सारी मस्ती, गुड वाइब्स की बातें, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, एंड साथ साथ में सुनेंगे मिर्चीदार बैंगर्स. सभी मिर्ची की वाइब्स को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: अकड़ी बकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में, और आज 4th of August ने हिस्ट्री में काफी प्लॉट ट्विस्ट दिए हैं। लेट्स फाइंड आउट थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग करके। सबसे पहले चलते हैं 1704 में, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड जिब्राल्टर। फिर आया 1914, ग्रेट ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन जर्मनी आफ्टर बेल्जियम पर इन्वेजन हुआ, और इसी के साथ दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंधेरे चैप्टर में एंट्री मार दी। 1944 में एक बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट डेट, एम्स्टरडेम में फ्रैंक, उनकी फैमिली और दूसरे लोग जो सीक्रेटली हाइड करके रह रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनकी डायरी आज भी होप, करेज एंड ह्यूमैनिटी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। और 1964 में हुआ गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, जिसने वियतनाम वॉर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया। सो देखा हिस्ट्री कितनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ नगेट्स है तो मुझे बताओ, डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में। चलो अब देखते हैं कि आज का मौसम क्या कहता है। सबसे पहले गुड न्यूज है कि अगले 24 आवर्स में रेन का चांस ऑलमोस्ट जीरो है, सो अम्ब्रेलास को आज थोड़ा सा पेड लीव मिल सकता है। वैसे लास्ट 24 आवर्स में आसमान ने फुल ऑन परफॉर्मेंस दी है, 69 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है, मतलब क्लाउड्स ने लिटरली ओवर टाइम किया है। अभी टेम्परेचर इज एट 67 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। सुबह 7 बजे के आसपास क्लाउड्स थोड़े से थे और वेदर पार्टी काफी क्लाउडी चल रही थी, जो कि थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है। आज का टेम्परेचर रेंज जो है वो 66 डिग्री से लेकर 84 डिग्री फारेनहाइट तक है और फील्स लाइक टेम्परेचर इज 67 डिग्री से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। तो अगर आफ्टरनून में लगे कि एसी और चाय दोनों एक साथ चाहिए, डोंट यू वरी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड, वेदर ही कुछ ऐसा है। और आज का हाई जाने वाला है ऑलमोस्ट कल की तरह ही, कल 86 डिग्री फारेनहाइट था, आज 84 डिग्री फारेनहाइट के आसपास रहने वाला है। तो वेदर भी कॉपी पेस्ट करके आया है आज। फिलहाल सन ग्लासेस अपने साथ में रखो, लेयर के प्लेयर बने रहो, एंड साथ साथ में वेयर और सन प्रोटेक्शन SPF 50+++ के साथ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची की वाइब्स के साथ चलते हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए। और मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब इस आवर की टॉप 3 अपडेट सुनने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले सेवरल यूजर्स इंक्लूडिंग मेनी पीपल इन इंडिया रिपोर्टेड दैट व्हाट्सएप अकाउंट बीइंग टेंपरेरली प्लेस्ड अंडर रिव्यू विद एक्सेस टू सम फीचर्स रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल एक्टिविटी इज चेक्ड। द रिव्यू मैसेज सेज इट टिपिकली टेक्स अप टू 24 आवर्स, तो फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पर इंडियन अल्ट्रा रनर सोफिया सूफी हैज क्रिएटेड अनदर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बाय रनिंग एन इनक्रेडिबल 4,167 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर इन जस्ट 68 डेज एंड 23 hours. She says she wanted to finish in under 80 days और वो करके भी दिखा दिया है। And lastly, Praveen Nair, social worker, philanthropist and grandmother of New York Mayor Zoran Mamdani has passed away at the age of 94. She also inspired Zoran's 2019 tribute rap Nani. Beyond that, she's co-founded the Salaam Balak Trust, supporting underprivileged street children. Our thoughts are with her family and friends and everyone whose lives she touched. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो शुरू करते हैं दो स्टोरीज के साथ जो देसीज को पक्का स्माइल देकर ही जाएगी। देखो, अगर तुम सुपर हीरो फैन हो, साइफाई लवर हो या फिर हार्डकोर बॉलीवुड बफ हो, तो दिसंबर इज ऑफिशियली गोइंग टू बी अ मूवी मैराथन फॉर यू। शाहरुख खान AKA द किंग खान इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन 24th of December, राइट बिटवीन एवेंजर्स डूम्सडे एंड डून पार्ट 3, और साथ में जुमांजी ओपन वर्ल्ड भी। मतलब कि क्रिसमस प्लान्स काफी सिंपल हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन से भरे होंगे कि कौन सी मूवी पहले देखी जाए। अभी से कुछ मूवीज के एडवांस बुकिंग्स चल रही है, वो तुम बुक करा सकते हो। वैसे तुम इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो तो मुझे बताओ। उसके पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर सेलिब्रेट हो रहा है स्पार्कल विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। और अगर तुम्हारे पास कोई भी पुराना किसी भी जगह से खरीदा हुआ गोल्ड रखा है 18 कैरेट एंड अबव, तो उसको ले जाओ, एक्सचेंज कराओ एट 0% डिडक्शन। ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है तनिष्क पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के थ्रू। और जल्दी से मुझे बताओ इनमें से कौन सी मूवी के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, या कौन सी वाली पहले देखोगे? शाहरुख खान की किंग, एवेंजर्स डूम्सडे, डून पार्ट 3, या फिर जुमांजी ओपन वर्ल्ड? डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। Stay tuned and stay hot.

Alrighty then, आज तुम्हारा स्पेशल डे है. हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और आज के दिन तुम्हारे साथ बर्थडे गैंग में कौन कौन शामिल है, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले वीव गॉट द 44th US प्रेसिडेंट बराक ओबामा. एंड रॉयल वाइब्स की बात चली रही है तो इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ मेगन मार्कल एंड द लेट क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर. एंड आज के दिन द लेजेंडरी इंडियन सिंगर किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है. एंड वीव गॉट द ऑस्कर विनिंग एक्टर बिली बॉब थॉर्नटन, ग्रेटा गर्विग एंड ट्विन स्टार्स कोल एंड डिलन स्प्राउस. एंड दैट्स इट फॉर योर हैप्पी बर्थडे शाउट आउट. अगर तुम्हें भी किसी को विश करना है तो तुम मुझे बता सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग. एंड राइट नाउ लेट्स लिसन टू सम मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ तुम्हारी मॉर्निंग्स। और टाइम हो गया है गोल्ड का अपडेटेड रेट जानने का।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,070, $4,070 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन इस साल गोल्ड $5,600 की पीक एक बार टच कर चुका है और करेक्शन के साथ इस समय 4070 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए चाहे पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड बार्स हो या सिल्वर बार्स 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम, किलो बार्स, RajJewels.com विजिट करें और गोल्ड में राजजुल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैव अ मॉर्निंग टू
0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में कनेक्ट करूं मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: AG, the gangster.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और टाइम आ गया है मिर्ची आवक एट 3 का, जहाँ पर मिलती है तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की खबरें सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। सबसे पहले यूएसए क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी हैज बीन हैंडेड एन 8-year बैन बाय द आईसीसी आफ्टर इट्स एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मल्टीपल ब्रीचेस रिलेटेड टू द अबू धाबी T10 2025 इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस मैचेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। नंबर टू पर अ सिनेमा इन कोलंबिया रिपोर्टेडली हैड टू बी इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग अ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्क्रीनिंग आफ्टर एन एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट smell caused audience members to leave the auditorium. And lastly, former Australian fast bowler Brett Lee has finally cleared the air about long-running rumors linking him with Bollywood star Preeti Zinta. Brett says they were and still are great friends, but they never dated. And that's it for Mirchi Avoca 3 for this hour with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 64 472 double four. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। वेलकम टू रांची जोन। देखते हैं आज तुम्हारे सितारे तुम्हें क्या मैसेज भेज रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि कॉन्फिडेंस फुल पावर में है। जो काम इम्पॉसिबल लग रहे थे आज उसका फर्स्ट स्टेप लेना पड़ सकता है या ले लोगे। सरप्राइज खुद ही हो जाएगा। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज। लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज ऑनेस्टी ही तुम्हारा सुपर पावर है। थोड़ा सा ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन भी आज के दिन के लिए बेटर है, बाद में अरे यार ये तो बताया ही नहीं वाले मोमेंट अवॉइड हो जाएंगे। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन। लकी नंबर इज 8। जेमिनी यानी मिथुन राशि, गुड न्यूज इज लोडिंग। किसी पुरानी मेहनत का रिवॉर्ड आज मिल सकता है, बस हम्बल रहने का, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने का और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का। लकी कलर इज स्काई ब्लू। लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, आज किसी ने तुम्हारी हेल्प की, परफेक्ट। काइंडनेस का रिटर्न गिफ्ट देने का दिन है। गुड कार्मा भी कैशबैक जैसा ही होता है। लकी कलर इज पिंक। लकी नंबर इज 4। लियो यानी कि सिंह राशि, रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा डबल चेक करना बनता है बॉस। एक्साइटमेंट अच्छी बात होती है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लाइफ में हर जगह होते हैं। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर। लकी नंबर इज 15। वर्गो यानी कन्या राशि, किसी अपने के एडवाइस इग्नोर मत करना आज के दिन। कभी कभी लाइफ का बेस्ट अपडेट गूगल से नहीं बल्कि घर वालों से मिलता है। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 33। एंड दैट इज राशि जोन नंबर 1 का दी एंड। अगर तुम्हारी राशि अभी नहीं आई है, डोंट गो एनीवेयर, नेक्स्ट जोन में आने वाली है बाकी बची राशियां। बट उसके पहले आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, और उसके पहले यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगवा ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ, और चलो कंप्लीट करते हैं बचा हुआ राशि जोन ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, थोड़ा और हासिल, थोड़ा काम प्रोक्रेस्टिनेशन, आउटस्टैंडिंग काम को फिनिश कर लो, फ्यूचर वाला तुमको थैंक यू बोलने आएगा। लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोलो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आज टीम वर्क ही तुम्हारा सीक्रेट वेपन है, स्क्वाड गोल्स लिटरली। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 6। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, छोटी सी डिसएग्रीमेंट को ब्लॉकबस्टर ड्रामा मत बनने दो यार, डीप ब्रेथ्स लो और जरूरत हो तो ग्रेसफुल एग्जिट भी एक टैलेंट होता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 14। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पार्टनरशिप में फेयर प्ले रखो, याद रखो विन वही होती है जहां पर सब स्माइल करें। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 31। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, ये ट्विस्ट हैप्पी एंडिंग्स की तरफ जा सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ब्लू, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज अपने लव्ड वंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और रीअश्योरेंस दो, दिल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमेशा सबसे अच्छा होता है। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 27। एंड दैट वाज इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसला के साथ सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स, अब जाके चेकआउट करो मेरे सोशल्स, फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

और इसी नोट पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर से मेरे यानी कि प्रिसिला के जाने का टाइम हो गया है शुरू। लेकिन पता है क्या, जाने से पहले मैं तुम्हें एक फील गुड स्टोरी बताऊंगी जिससे आज का दिन थोड़ा और मोटिवेशनल हो जाएगा। तो फ्लोरिडा के नेथन थॉमस ने सिर्फ 18 साल एंड 346 डेज की एज में इंजीनियरिंग प्रोफेसर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इस अचीवमेंट के साथ उन्होंने 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है जो कि मैथमेटिशियन कॉलिन मैकलॉरिन के नाम था। और सच बताऊं, कुछ लोग ना 18 इयर्स की एज में आज भी कॉलेज का क्लासरूम ढूंढ रहे होते हैं, इनफैक्ट बाथरूम ढूंढ रहे होते हैं। और नेथन जो है उन्होंने क्लासरूम के फ्रंट में खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। बस ये याद रखना, लाइफ जो है ना वो रेस नहीं है। किसी का माइलस्टोन 18 पर आ जाता है, किसी का 28 पर, किसी का 48 पर और किसी का शायद 78 पर। कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस और हर दिन का एक छोटा सा स्टेप जो कि फ्यूचर को और बड़ी हेडलाइन की तरफ ले जाता है या किसी बड़े मुकाम की तरफ ले जाता है। एंड उससे मुझे याद है मेरा बस स्टॉप तो यहाँ आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स, वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क या फिर कैचिंग द ट्रेन या फिर सिपिंग योर चाय या ऑफिस लॉग इन करते हुए सीक्रेटली मुझे सुन रहे थे या फिर यूं ही तुम्हें गाने पसंद है और मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया। यू मेड माई मॉर्निंग मच मच मच ब्राइटर। एंड अभी लेट्स स्टे कनेक्टेड इवन आफ्टर द माइक गोज ऑफ। फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X, and WhatsApp ka number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माय चैनल।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लगे में लड़ता नहीं लेकिन दिमाग खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हुए बादशाह।

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का फिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइंस पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। दिखा लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौ। I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती। लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छेड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया, इतनी मस्ती बहना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं, गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थर आए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके कौन एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके कौन देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए। और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई, तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हो ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं, मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे। तब लगता था कि कितना काम है यार, लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: Uff, ye sawal hum aksar pyar se karte hi karte hain. Kaun sa sawal? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना
1: मिर्ची 90s कैसेट
2: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना
3: प्यार तूने क्या किया हे प्यार तूने क्या किया
2: बट डू यू नो इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है But isn't it cool कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर खुद से हुई मैं बेखबर मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ अरे अरे अरे अरे आप कहाँ चल दिए अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट

Michi. It's hot.

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए। सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे, एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1972 मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को, एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है। कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं। यू नो आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू कि ऑफकोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मैंने

उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चिढ़ाने के लिए जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। He knew it was going to be huge. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियाँ चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था, 1994 में आई अंदाज अपना अपना। उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे, पर ये वाली जो लाइन थी तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने ये डायलॉग लिखा मोगैम्बो खुश हुआ, तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा।

डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उस पे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उस पे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। आई मीन पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ में है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। आई मीन पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ में बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Mm-hmm.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भाई गाना पसंद आने के लिए इतने प्रोसेसेस तो नहीं होते।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर एंड कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ यार। सो बेसिकली इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुआ जिसको लेके अरिजीत सिंह के कमबैक की भी बात हुई थी। वेल आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, बट फिलहाल अमाल मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनके इस गाने उस एल्बम को लेकर उनके जो राइवल लोग हैं ना वो पेड पीआर कर रहे हैं और उनके गाने को उनके साउंडट्रैक को अटैक कर रहे हैं। बट यार अमाल अगर ये बात सच है तो मेरे पास तो पैसा नहीं आया यार, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये गाना कुछ खास समझ नहीं आया। एंड उससे भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द थिंग जो आपने कहा। सो अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक एवरी सॉन्ग नीड्स टाइम टू ब्रीद। उनके हिसाब से इंसान के सिस्टम तक दिल तक पहुंचने के लिए ना उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ऑडियंस के बीच। बट कसम से जिस दिन ये गाना आया था उस दिन सुना मैंने, उसके बाद 2-3 दिन लगातार सुनने की कोशिश की कि क्या पता

झूमेगाओ है रेला ऊं चबाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: Not your typical monsoon movie.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम. देखो यार, बारिश और बॉलीवुड से सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में यही आता है. या फॉर दैट मैटर, गीली साड़ियों में नाचती लड़कियां, कोरियोग्राफ्ड नंबर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी मॉनसून मूवीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने बारिश को एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मॉनसून वेडिंग, नंबर दो पे तुम्बाड़, नंबर तीन पे रेनकोट, एंड अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी कौन. ये फिल्म आई थी 1999 में. एंड कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ फिल्में आपको हर इंसान पर शक करना सिखाती हैं. वेल, कौन उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स और लगभग पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर, फिर भी सस्पेंस एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होता. दूसरी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंसेस जो बिना लाउड हुए आपको एज ऑफ योर सीट पर बिठा देती हैं. और तीसरी, इसका ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई असली खतरा था कौन. और इस पूरी कहानी के बीच जिस हिसाब से बारिश और थंडर अपना रोल प्ले करते हैं, दैट ट्रैप्स यू इनसाइड इट्स पैरानोया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे बात करूंगी अबाउट द फिल्म धोबी घाट. मुंबई को अगर किसी फिल्म ने सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस करवाया है, तो ये फिल्म है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, मुंबई ऑफ कोर्स. यहाँ शहर सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, फिल्म का एक जिंदा कैरेक्टर है. दूसरी, चार अलग जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और बिल्कुल अलग भी, जस्ट लाइक आवर वेरी ओन मुंबई. और तीसरी, इसकी खामोशी. ये फिल्म डायलॉग से कम और नजरों, तन्हाई और अनसेट इमोशन से ज्यादा बात करती है. और इस फिल्म के जरिए किरण राव बहुत ही खूबसूरती से अर्बन लोनलीनेस को बारिश के साथ पेंट करते हुए दिखाती हैं. तो बताइए, पांच का पंच की मेरी इस लिस्ट में आप कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहोगे? मिर्ची श्रुति के नाम से लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस दैट. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.